नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा।

0: मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैप महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6:05 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਣੀ।
2: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਣੀ

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निमि राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निमि ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

बुल्ले शाह इत्थे सब मुसाफिर बैठ किसे नहीं रहना। इस वाटे किसे ने सच दियां पंडा बनिया ते किसे ने सिर्फ झूठ ढोया। अते सब वणजारियां वांग अपना वणज मुका के अपनी वाटे तुरे जा रहे ने।

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ 7 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग

रुख बेलियो रुख लगाइए रुख, फेर मिलेगा सुख बेलियो फेर मिलेगा सुख। रुखां तो मैं सदके जावां दिंदे सानू ठंडियां छावां, आप हंडाउंदे धुप बेलियो आप हंडाउंदे धुप। साफ रहेगा पौन ते पानी वधे फुलेगी कुदरत राणी, जे लावांगे रुख बेलियो जे लावांगे रुख। रुख लगाओ वातावरण बचाओ।

0: FM ਬੈਂਡ 100.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਐਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही

0: गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत

0: इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे, जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण

0: The Tribune cites Chhattisgarh government turns former Naxal hit areas into tourist hubs, with tribal culture helping the communities develop a sense of ownership while generating income. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग अज नवी दिल्ली च होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो सिक्किम के तीन दिन दौरे ते होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग विच गंडोला रोप विच तकनीकी खराबी तो बाद फसे सारे 300 सैलानियों नूं सुरक्षित बचाया गया। पंजाब च आम नगर निगम चोणां 2026 लई 103 नगर पालिकावां वास्ते वोटां पै रहियां ने। विश्व सेहत संगठन ने इबोला वायरस नूं जनतक सेहत एमरजेंसी ऐलानिया। सिविल हवाबाजी डायरेक्टोरेट जनरल ने जारी किए निर्देश। अते आईपीएल क्रिकेट विच अज पहले क्वालीफायर च मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दा मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होवेगा। विदेश मंत्री डॉ एच जयशंकर अज नवी दिल्ली च क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पैनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी, अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस विच हिस्सा लेंगे। यह मीटिंग क्वाड सहयोग नूं अगे वधाउण, वख-वख पहलकदमियां ते प्रगति की समीक्षा करन अते हिंदू प्रशांत खेतर च नवे विकास ते चर्चा करन ते केंद्रित होवेगी। मंत्री पिछले साल वाशिंगटन विच क्वाड ते एक खुले ते समावेशी हिंदू प्रशांत लई विजन दे तहत होईयां चर्चावां ते निर्माण करनगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो सिक्किम के तीन दिन दौरे ते होंगे। दौरे दौरान राष्ट्रपति वख-वख प्रोग्रामां च हिस्सा लैणगे ते कई थावां दा दौरा करनगे। सिक्किम सरकार ने राष्ट्रपति दे स्वागत लई व्यापक प्रबंध कीते ने। राष्ट्रपति अज शाम गंगटोक च नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्था जाणगे। कल राष्ट्रपति नाथूला पास दा दौरा करनगे ते उत्थे तैनात सैनिकां नाल गल्लबात वी करनगे। इस तों बाद ओह गंगटोक विच सिक्किम यूनिवर्सिटी दे कन्वोकेशन समारोह च शिरकत करनगे। दौरे दे आखिरी दिन राष्ट्रपति गंगटोक ते पालजौर स्टेडियम च इक समारोह च सिक्किम पुलिस नूं राष्ट्रपति पुलिस झंडा प्रदान करनगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों विच सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे। वह अज राजस्थान के बीकानेर पहुंचे, जिथे वह दो दिन दौरे ते होंगे। अज सवेरे वह बीएसएफ की सांचू सरहदी चौकी का दौरा करेंगे ते सुरक्षा बलों नाल गलबात भी करेंगे ते उन्हां दी भलाई योजनावां दा उद्घाटन करेंगे। दुपहरे वह बीकानेर विच सरहदी इलाकों च सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। मीटिंग विच गृह मंत्रालय ते राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी नाल ही पंच सरहदी जिलों के जिला कलैक्टर ते पुलिस सुपरडेंट भी शामिल रहेंगे। इस तों बाद इस महीने की 29 तरीक नूं अमित शाह गुजरात के पुज जाणगे। उत्थे ओह एक बीएसएफ सरहदी चौकी का निरीक्षण करेंगे। अगले महीने की 5 तरीक नूं गृहमंत्री त्रिपुरा के सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे। इस तों बाद ओह पछमी बंगाल की यात्रा करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग विच गंडोला रोपवे विच तकनीकी खराबी तो बाद फसे सारे सैलानियों नूं सुरक्षित बचा लिया गया। अधिकारियों मुताबक रोपवे के 65 कैबिनां च 300 तों वध सैलानी फस गए सन। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फौज ते प्रशासन ने सांझे तौर ते लगभग 7 घंटे चलिया बचा कार्य चलाया ते सारयां नूं सुरक्षित बाहर कढ़िया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के हुक्म दिते ने। दिल्ली विच कंप्रेस्ड नैचुरल गैस सीएनजी की कीमत विच 2 रुपए प्रति किलोग्राम का वाधा किया गया। अज सवेरे 6 बजे तो लागू इस नवी दर तो बाद राष्ट्रीय राजधानी विच सीएनजी की नवी कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। यह खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਆਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2000

0: तेरा मेरा की रिश्ता। इस पंजाबी फिल्म दे विचों तुसीं सुनिया फिरोज़ खान ते सुनिधि चौहान दीआं आवाज़ां दे विच इस गीत नूं, जिसका संगीत तैयार किया सी जयदेव कुमार ने ते बोल लिखे सन इरशाद कामिल ने।
1: साडा सारिआं दा हरमन प्यारा आकाशवाणी अज दे दिन 8 जून सन 1936 नूं होंद विच आया सी। बीते 9 दहाकों तो देश भर में आकाशवाणी के वख वख केंद्र अपने प्रोग्रामा राही स्रोतियां का मनोरंजन करन दे नाल नाल उन्हां नूं जागरूक करन दा भी यतन करते रहे ने ते अगे भी करते रहेंगे। इस सफर ते साडे नाल चलण लई साडे सारे स्रोतियां का धन्नवाद। बने रहो आकाशवाणी दे नाल, तुहाडा अपना रेडियो।
0: चल मेरा पुत्त पंजाबी फिल्म चों ये आवाज़ां ने अमरिंदर गिल ते साथियां दियां।

0: जिक्र यार दा आया ते अर्ज कर दिया।
1: अर्शाद करो जी।
0: यारा नाल बहारा अड़िया, कहंदिया दिल दिया तारा अड़िया।

0: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म है गजनी, कार्तिक की आवाज, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

गजनी फिल्म से आप सुन रहे थे ए आर रहमान का कंपोज किया हुआ ये बेहतरीन म्यूजिक। आइए अगला गाना सुनते हैं उन्हीं की कंपोजिशन में, युवराज फिल्म से, बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और ए आर रहमान की आवाज़ों में गुलजार के बोल।

0: डिस्कशन फिल्म से गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं यह संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए अब सुनवाते हैं हम आपको टशन फिल्म से गाना, जिसके लिए करवा रहे थे हम आपको इतना इंतजार। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर इंतजार का फल मीठा होता है। इस बार आपके इस इंतजार का फल थोड़ा सुरीला होने वाला है।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, तुम्हारी सुलुफ। इस फिल्म से रोंकिनी गुप्ता की आवाज में शांतनु घाटक का म्यूजिक और लिरिक्स।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, जब हैरी मेट सेजल। इस फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

0: इसी गाने के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: यस, हु इज इट?
2: डॉन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।
4: कोई

21 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

उनके पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

शाहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर

दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी माँ हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

शाह यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजात खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वा बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां।

चौहान ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।

0: बताओ, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है।
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी, मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
0: बिल्कुल
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
0: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा,
0: जी
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने इन
0: जी
1: फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओ, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी,
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष हैं सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी,
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी,
1: ये 1 से 2 सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी,
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी,
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम। श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
5: बिल्कुल ठीक
4: है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: जय जेरापुर, जय भारत।
7: जय जेरापुर, जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह।
8: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का

0: महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
1: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
0: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
1: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
2: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
2: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
2: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
2: जी महाराज।
0: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह खास।
6: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
6: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
6: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
6: जी।
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
6: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
3: जी।
6: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
7: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
0: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहां के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
1: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
7: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
8: बिल्कुल।
7: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की

0: तरह उसके साथ रहते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
1: हुजूर आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
0: लेकिन जरा होशियारी से।
1: जो हुकुम सरकार।

0: बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
1: काला पानी की सजा?
0: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
2: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
3: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: एनसीईआरटी द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हुणे तुसीं सुन रहे सी उमंग। साडा अगला प्रोग्राम हैल फरमाइश, थोड़ी देर इंतजार करो।
6: ए बब्बो, तू किथे गई थी?
7: ए बस बाहर ठीकरे मां पानी पाके आई हां। कुत्ते की जीव निकली पई थी गर्मी गेल ता।
6: हां, पर सारे नहीं ना पांदे पानी ना बेजवाना नु।
7: किसे जी नु पानी पिलाना ता सब ते बड़ा पुण्य का कार्य है, पर मनु ता लोड़ पवा हमें दा फ्रिज मते कड के पी ले। हां, बेजवाना ने किस नु कहना?
6: हां, ताही ता हमें सारेया नु यही बेनती करा, भई घरां ते बाहर ठीकरे मां पानी पाके रखो, ताके बेजवान जानवर या पंछी पी सके।

0: कानूनी सेवावां अथॉरिटी एक्ट 1987 दी धारा 12 दे तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्याबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तों प्राप्त कर सकते ने।
1: रुख लगाइए रुख बेलियो, रुख लगाइए रुख, फेर मिलेगा सुख बेलियो, फेर मिलेगा सुख। रुखां तों मैं सदके जावां, दिंदे सानू ठंडियां छावां। आप हंडाउंदे धुप बेलियो, आप हंडाउंदे धुप, साफ रहेगा पौण ते पाणी, वधे फुलेगी कुदरत राणी। जे लावांगे रुख बेलियो, जे लावांगे रुख। रुख लगाओ, वातावरण बचाओ।

0: कार तो काम करो, वादू तनखा बस एक क्लिक ते, वाजी वाह।
1: फसी।
2: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो। आरबीआई कहंदा है।
3: जानकार बनो, सुचेत रहो।
4: प्रोग्राम चल रहा है हिंदी जायका ते असी इस प्रोग्राम दे विच सानू जो व्हाट्सएप दे जरिए मैसेज मिले है जी, जाडला टाउन एसपी

0: ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 100.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने

0: कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ FM ਬੈਂਡ 100.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ EIR ਐਪ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਰੀ ਲੋਕ ਦਾ।

0: बैड कंपनी नहीं चाहिए हमें,
1: हाँ
0: वो भी मैनेज करना पड़ता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो ही जाता है, फैमिली हमें ट्रिप्स पे ले जाते हैं कभी कभी, माइंड जो है वो भी हल्का हो जाता है इसके कारण।
1: टाइम स्पेंड फैमिली के साथ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही मतलब माइंड हल्का होएगा, और बात करने वाला कोई घर पे है नहीं है। तो जैसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, तो वो इवनिंग के टाइम ही होता था, क्योंकि सुबह तो स्कूल में हो जाता था, फिर आफ्टरनून में पेरेंट्स वर्किंग हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता था, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट, फिर शाम को ही पेरेंट्स के साथ टाइम मिलता था। जैसे बाकी वीकेंड्स वगैरह हो गए तो कहीं घूमने चले गए तो वहाँ पर टाइम स्पेंड होता।
0: मतलब तुसी ये सोचे भी जेड़ा 99.4% मार्क्स थोड़े दोवां दे आए ने, तां की ये मिथ्या होया सीगा भी असी इन्ने 100% मार्क्स स्कोर करने ने तां इन्ने असी स्कोर कर पाए हैं, या फिर बस एवें सी कि नहीं असी वधिया नंबर लैने ने ते अगे IIT विच जाना है या अगे CA करनी है, या ओहदे आधार ते ये मार्क्स आए ने?
1: नहीं, मेरा पहले से ही ड्रीम था कि 10th में तो मैंने टॉप करना ही करना है। तो एक होता नहीं थिंग लाइक मैनिफेस्टेशन, तो वो 99 जो चाहिए था वो ही आ गए।
0: ऑफ कोर्स।
1: मेरा भी यही था कि मैंने 99 पॉइंट जितने भी आगे स्कोर करने हैं, क्योंकि लाइक जो लास्ट डे था हमारा स्कूल का, तो मैं अपने प्रिंसिपल से मिलने गया था, तो मेरे को कहते कि तूने 99% प्लस स्कोर करने हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे प्रिंसिपल मेरे में बिलीव करते हैं तो फिर मैं खुद क्यों नहीं कर सकता। तो फिर मैंने भी काफ़ी मेहनत करी, क्योंकि उससे पहले मेरा जो गोल था वो 95% प्लस था, 99% मैंने सोचा नहीं था। फिर 99% जो मैंने सोचा कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैंने करा वो।
0: एक ना थोड़ी जनरेशन, जिवें तुसी बहुत यंग हो, तुसी हले 10th क्लास कीती अपनी, तां थोड़ी जनरेशन लई एक गल बहुत ज़्यादा मन्नी जांदी है वी सोशल मीडिया विच थोड़ा रुझान बहुत रहिंदा है। इस जनरेशन दा इंटरनेट विच बहुत रुझान है, इस जनरेशन दा AI विच बहुत रुझान है, ते होर इदां दीआं चीज़ां वी, इह डूम स्क्रोलिंग बहुत करदे ने, इह टाइम वेस्ट बहुत करदे ने, तां उहदे बारे तुसी, क्योंकि एक एग्जाम्पल सैट कीती है तुसी 99.4% मार्क्स लैके, उहदे बारे तुसी की कहोगे?
1: ये सब लाइक इंस्टाग्राम जो भी वगैरह है, ये पहले 8th 9th में तो अच्छा लगता था, फिर 10th की स्टार्टिंग हुई, देन बीच में जब जून आया तब मैंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। तो तब तक तो वो डीएक्टिविटी था, तो मेरे पास ज़्यादा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, तो मोस्टली जब मैंने पढ़ना भी होता था मैं अलार्म्स लगा देती थी कि कोई भी टाइम जो इधर उधर ना हो।
0: गुड।
1: डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट है अगर तुम इसको कंट्रोल ना करो। पर मेरे को पता था कि अगर मैं कंट्रोल नहीं करूँगा तो डेफिनेटली मेरा टाइम चला जाएगा, कि 2 घंटे 3 घंटे पता नहीं लगते। फिर मैंने सोचा कि नहीं करना चाहिए, तो फिर मैंने कंट्रोल करा खुद के ऊपर। और डेफिनेटली अगर आप तुम कंट्रोल कर रहे हो तो तुम्हें मतलब ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं रोकेगा पढ़ने से।
0: तुसी दोवें जनी अपनी एज दे हिसाब नाल बहुत मैच्योर लग रहे हो, थोड़ियां गल्लां तो ये लग रहा है, तां की आपां ये कह सकदे हां वी ये जनरेशन दी प्रॉब्लम नहीं हैगी, ये एक इंडिविजुअल दी प्रॉब्लम हुंदी है वी तुसी किवें अपना टाइम केड़ी चीज़ नूं देना है, ये परसन टू परसन वेरी करदा है, ये जनरेशन ते नहीं वेरी करदा हैगा।
1: डेफिनेटली माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि तुसी मैच्योर हो काफ़ी ज़्यादा, ते जे तुसी मैच्योर नहीं हो, तुहानू नहीं समझ आ रहे तुसी अग्गे की करना है, तो फिर तुसी डेफिनेटली इस जनरेशन दे जिहड़े स्टीरियोटिपिकल तुसी कह रहे हो कि सोशल मीडिया वल जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली जाएंगे जे तुहाडा माइंडसेट मैच्योर नहीं है।
0: इवन लाइक आपकी जो कंपनी भी होती है वो भी ज़्यादा मैटर करती है। एक बंदे को इतना सोचना चाहिए कि आपके दोस्त अगर गलत काम कर रहे हैं तो आपको उनको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज मैंने भी यही सेम चीज़ करी है।
1: पर ये होंगे ना भी सानू एवं लगता है कि नहीं पर मेरा दोस्त है या मेरी दोस्त है, मैं तो साथ किवें छड़ सकती हाँ, फिर वो किवें, मतलब जेड़े बच्चे ऐ सोचते हैं वो किवें छड़ सकते हैं अपने दोस्तों नू?
0: पर उनको सही करने के लिए तो बोल सकते हैं, अगर उनको खुद को फील हो रहा है तो दे कैन चेंज।
1: ते घरदियां दा किन्ना क किन्नी सपोर्ट रही है, जिवें पढ़ाई विच ये देखा जाता है अक्सर ही वी कई परिवारां विच कई घरां विच एवें हुंदा है कि कुड़ियां लई खासकर वी तुसी घर दे काम भी करने ने, तुसी ये भी करना है वो भी करना है, एक ना कुड़ी नूं सर्वगुण संपन्न बनाने ते लगे हुंदे ने घर दे, ते ओह मतलब घरदियां दी सपोर्ट उस चीज़ विच किद्दां दी रही है वी, पढ़ाई लई उन्होंने किन्ना क सपोर्ट करे ते होर कम्मां लई किन्ना क सपोर्ट करे या किन्ना क कहे उन्होंने ने?
0: मेरे फैमिली ने एक्चुअली मुझे कभी फोर्स ही नहीं करा कि मैं खाना बनाऊँ या मैं कोर्स करूँ वगैरह, मेरा खुद का इंटरेस्ट होता है कभी कभी खाना बनाने का। एंड देन मेरा छोटा भाई भी है, तो फिर वो तंग करता था मुझे, तो लाइक मम्मा उसको बोल देते थे मत तंग कर, तो इतना ज़्यादा कोऑपरेशन मिला है मुझे वो उसके टाइम पे, लाइक मैं रूम में डोर लगा लेती, नॉब लगा लेती थी, एंड उसके बाद मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती थी, तो वो सब कुछ हैंडल कर लेते बाहर ही।
1: वाह। ते थोड़े लिए प्रभाव घरदियां दी सपोर्ट किद्दां दी रही है?
0: वो बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि मेरे घर का माहौल ही लाइक पढ़ाई है, क्योंकि मेरा खुद का ब्रदर थोड़ा दस से IIT है, ते मेरा कज़न ब्रदर भी आया हुआ है, वो भी मतलब JEE की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर घर का एक माहौल होंगे कि पढ़ाई ही है, तो फिर घर डेफिनेटली ऐसा बन जाता है कि बच्चे पढ़ने वाले हैं तो इसलिए डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए।
1: सो
0: ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁਕਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ,

0: कर सकते हो, आपका कभी स्ट्रेस हो रहा है तो आप तब कर सकते हो वाली एक्टिविटीज़, एंड इससे ठीक बैलेंस हो जाता है आपकी लाइफ का।
1: मेरा जो मेन मैसेज मैं देना चाहता हूँ दैट इज़ कि तुम जो भी कर रहे हो, चाहे पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे कुछ और कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड में जा रहे हो, चाहे सीए बन रहे हो, चाहे डॉक्टर बन रहे हो, तुम उस चीज़ को इन्जॉय करो. तुम उसको एज एन ऑक्यूपेशनल प्रेशर मत लो कि मैंने करना ही करना है. अगर नहीं किया मैंने तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स कम आ जाएंगे या फिर तुम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए थोड़े से दुखी हो जाओगे कि मेरे से नहीं हुआ ये. पर अगर तुम उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो तुम डेफिनेटली उसको इंजॉय करो कि यार मेरे कम नंबर आए तो मैं उसके ऊपर हार्डवर्क करूंगा. और अगर तुम हार्डवर्क करके उसके ऊपर तुम मार्क्स अच्छे ला रहे हो तो तुम्हें एक खुद की मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मेरे को हार्डवर्क करके ही नंबर आ रहे हैं. तो जैसे हमें पता होता है कि हार्डवर्क करके नंबर आएंगे तो हमें एज अ प्रैक्टिकली फील नहीं हुआ कि ऐसे कभी वर्क भी करता है. पर अगर तुम उसको खुद से तुम कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो और तुम्हारे मार्क्स भी आ रहे हो, तुम खुद देख रहे हो कि हाँ इसी के कारण मार्क्स आ रहे हैं मेरे, तो तुम्हें डेफिनेटली रियलाइज होगा कि हार्डवर्क इज डेफिनेटली समथिंग दैट वी हैव टू पुट इन.
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा दोवां दा, ते बहुत छोटी उम्र विच ही तुसीं बहुत ज़्यादा ज्ञान वालियां गल्लां कर रहे हो, बहुत इंस्पायरिंग गल्लां कर रहे हो, ते उम्मीद करते हैं कि जिहड़े साडे स्रोते सानूं सुन रहे ने उन्हां नूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया होगा जैसमिन ते प्रभव तों। ते इसे दे नाल मैनूं अलीशा कौशिक नूं दिओ इजाज़त।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ CBSE 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਿਕ।
3: ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ।

प्रोग्राम चल रहा है नगमी ते नगमी दा अगला गीत तुहानू सुनाउण जा रहे हैं फिल्म त्रिशूल दे विचों ते इस गीत नू सुनन दी फरमाइश कीती है जी सानू मखू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरिया ते मुनीश बजाज से वालों पिंड बालद खुरद नेड़े भवानीगढ़ संगरूर तो साडे नाल बने हुए है जी अश्विनी गर्ग विनोद गर्ग प्रियंका गर्ग ते

प्रोग्राम चल रहे हैं नगमी दी नगमी दे विच सानू खत भेजिए जी सुखविंदर सिंह रुपिंदर सिंह भोला सिंह अमरजीत सिंह दर्शन सिंह सुरिंदर संधू नीरज जशन इन्हां ने यह खत लिखे है पिंड बनवाड़ी रासपुरा टाउन तो इन्हां ने खत लिख के भेजे जी गांधी चौंक रोपड़ तो बने हुए है साढ़े नाल हरदेव मीका बलविंदर विरक जयतीक विरक ती मीका विरक करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पुचो कैंचियां बठिंडा तो साढ़े नाल जुड़े हुए हैं प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर ती सिमरन एकम दमन ती अभिजोत दसुंदियाँ इन्हों सारे की पसंद ती फिल्म बॉबी का ये गीत

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की प्रधानगी हेठ क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग नवी दिल्ली विच हुई है। मीटिंग विच हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहलकदमी बारे सहमति बनी है। गृहमंत्री अमित शाह ने अज राजस्थान विच भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सरहद से सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। बीएसएफ के जवानों नाल गलबात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के तीन दिन दौरे से गंगटोक पहुंच गए हैं। पंजाब विच 8 नगर निगम 75 नगर कौंसलों से 20 नगर पंचायतों की चोणों लिए अज वोटां पै रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक 31.6% वोटिंग दर्ज की गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला पहले क्वालीफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की प्रधानगी हेठ क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग अज नवी दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पैनी वोंग, जापानी विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी और अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मीटिंग में हिस्सा लिया। क्वाड देश हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहलकदमी और समुद्री खेत में गतिविधियों के हालत की निगरानी लिए एक सांझी संचालन स्थिति से सहमत हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे, फिजी विच एक अजमायशी बंदरगाह प्रोजैक्ट और समुद्र हेठां केबलां विछाउण ते सहयोग बारे एक माहर पैनल स्थापित करन ते विचार करेगा। उन्होंने कहा कि मीटिंग के मुख्य नतीजे विचों एक क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क नूं अंतम रूप देना सी। क्वाड देशों ने भारत अमरीका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क ते भी दस्तखत किए ने। अज हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा तकनोलॉजी प्रबंधन नीति अंतरराष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और हंगामी प्रतिक्रिया अभ्यासों के खेत में क्वाड पहलकदमी का ऐलान भी किया गया। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग तो बाद अपने बयान में डॉ

0: ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਫਰੋਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ 2:15 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक

0: की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
0: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: Action. जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। FM ਬੈਂਡ 100.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR TV ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਨੇ। ਬਿਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਤੀਰੀਆਂ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾ।

0: ठीक है जी।
1: मेरा एक मुंडा ये वो भी बाहरले मुल्क गया था।
0: हाँ जी
1: मैं क्या भी उड़े अपने को जमीन हैगी, सारा सामान हैगा, ट्रैक्टर ट्राली सारा सामान, तू आप नौकर रख के कम कर, तू तू नौकर रहेगा फिर की मेनू चंगा लगूगा।
0: जी।
1: उरे तो वो आप नौकर रख के कम करा सकता नाल,
0: हाँ जी
1: उत्थे वो आप नौकर है,
0: हाँ, फर्क
1: इन्ना
0: है।
1: बट्टा
0: हाँ,
1: फिर कल
0: फर्क तो खैर बहुत है गया जी।
1: पैसा जी, कल पैसे नु भी आप की करेंगे ये जवा के दुखी रहन जी, पर उरे कम नहीं करते सारी।
0: ठीक है जी, तुहानू क्यों लगता है जी भी आप उरे काम नहीं करते, उत्थे काम कर लेंगे? ये जेड़ा झाका हैगा ये क्यों हैगा, की लगता तुहानू?
1: पता ना टेन है ये ना, जो भी मैं बाहर जाके कम करा उत्थे तो चाहे इन्हों टोकरे चावे एक कासे दे, उत्थे तो बहुत तंग करते ने इन्हों कम करन ते,
0: हाँ जी हाँ जी
1: पर ये आए कहते ने भी उरे कम ना हो पे असि उत्थे बाहरले मुल्क जाके करिए,
0: ठीक है जी, ठीक है।
1: अखा तो उले करते ने उत्थे नौकरी करते ने बगानी हुकूमत, चाहे बंदा बगानी हो नौकरी तो जे हम तुम अपने जी तुम भी करते हो थोन टाइम से हजार आना पेगा,
0: हाँ जी हाँ, काम तो कोई भी है जी, वो तो पाबंदी जेड़ी हैगी तुहाड़े काम दी है
1: जिदा
0: ना।
1: मर्जी कोई अफसर है उन्होंने ड्यूटी से हाजिर तो होना,
0: हाँ
1: कहते
0: जी
1: घर की सियाने ने कहा भी घर की खेती सुरग का वासा, जब मर्जी कोई ड्यूटी नहीं कोई उस नहीं, अपने घर का काम कर लो,
0: जी,
1: जिन्हें को जमीन है जी वो तो कर सकते हैं, चलो जेडे जमीन तो अन लसन है जी वो मैं मानता भी भाई जाके बाहर पैसा कमा सकते हैं जी,
0: हाँ जी
1: जिसे को घरे जमीन है जी वो तो घर की खेती हाल इतने बाहे
0: हाँ, ठीक है जी,
1: कम करके खावे जी इतने,
0: सही है जी।
1: नाले माँ बाप के अखां दे सामने रहना।
0: चलो कुछ क खिच जड़ी हैगी है, ठीक है, साढ़े बच्चों नू साढ़े नौजवानों नू जड़ी हैगी है बाहर वाल प्रेरित कर रही हैगी है। वधिया गल कीती तुसी कि इत्थे भी रह के काम कर कीता जा सकदा है।
1: हाँ जी उरे अपनी हुकूमत च रहना, उसे बगानी हुकूमत च रहना है।
0: हाँ जी, शुक्रिया जी प्रोग्राम च फोन करन दी।
1: धन्यवाद भैन जी।
0: श्रोतियों स्टूडियो का नंबर 0175-2280-496, नौजवानों के विच विदेश जाने का रुझान जिहड़ा वध रहा है इसी विषय के उपर अज असी गल्लबात कर रहे हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ अच्छा। जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
2: महसूस करते हैं। और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं हाँ। वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं हाँ। कि नहीं भाई अभी
1: अरे,
2: तो
1: क्या बात करने वाली है आज
2: क्या बोलने वाली है
1: तो बताओ आज क्या बात करने वाले हैं।
2: देखिए, जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी खरीद के, राशन पानी है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर
1: तो
2: के।
1: मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें सारी बातें कहकर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए।
2: नागनी मैम, देखिए क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती है ना, ये हर घर में होती है। कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर में भी ऐसी चीजें।
1: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है अच्छा। कि भी हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
2: बिल्कुल।
1: हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें, क्योंकि हम घर पर ही हैं।
2: हम घर पर हैं और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
1: आनंद भी आता है,
2: आनंद भी आता है। और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना,
1: तब
2: भागदौड़ मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो फिर ये सुनने को
1: ही अधूरापन मिलेगा, अव्यवस्था मिलेगी।
2: मतलब कहने का मतलब है खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल, ये तो है, अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए कि आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
2: तो देखिए, हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें।
1: लिखे ये कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है, हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते हैं,
2: आप बता सकते

0: हैं कि फलाना अभी कान का कच्चा
1: हाँ,
0: है
1: ऐसे
0: ऐसा।
1: जिंदगी में हमारे साथ
0: जी
1: हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में, ऐसा
0: हाँ
1: बहुत बार होता है हमारे अपने
0: बिल्कुल।
1: घर में ही। कुछ लोग हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं, अरे भाई माँ, आपको पापा ने एक और आपने बात मान ली तो
0: हाँ
1: आप कान की कच्ची हो, इसका मतलब।
0: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर
1: हाँ,
0: भेजिए जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी आए और हमें भी पढ़ के अच्छा
1: अच्छा
0: लगे।
1: लगे।
0: और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी, उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: सुनते हैं
0: चलिए
1: ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए, तेरा खत लेके सदम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास, हमारे श्रोताओं के बहुत
0: खत
1: सारे
0: आ गए हैं।
1: खत आ चुके हैं और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाकिनी जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
0: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
1: आत्मसुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है, छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते हैं।
0: अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं, कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग, पानी चलता रहता है नलों से लगातार। आपने देखा होगा छोटे शहर में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी

0: अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचें कि कोई करे या नहीं, मुझे तो ज़रूरतमंदों की सहायता करनी ही है, और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूँ, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं, तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए। आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा, वो
1: बिल्कुल
0: आपको, आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की
1: बिल्कुल।
0: सोचिए।
1: कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है,
0: जी
1: यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से
0: जी
1: अच्छा व्यवहार करेगा।
0: क्या
1: तो
0: बात
1: वही
0: है
1: बात हमारे सामने
0: जी।
1: होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय, रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें,
0: बहुत
1: है
0: सुंदर
1: ना।
0: सी बात
1: हाँ,
0: लिखी है इन्होंने।
1: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है,
0: जी
1: फिर मिलते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत
1: स्वागत है।
0: है।
1: और देखिए, एक संदेश है मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है, तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते हैं पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम 1 घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो, तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है
1: जी।
0: मोबाइल और बच्चे, तो
1: बच्चे
0: कि
1: पूरा
0: बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं।
1: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं,
0: हाँ।
1: मम्मी तुमने 1 घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा,
0: हाँ।
1: तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं, ये हमें चाहिए।
0: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले

0: मोबाइल बंद कर दीजिए ऐसा कहते हैं, और सुबह
1: बिल्कुल
0: उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने
1: बिल्कुल
0: लग जाती है, क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में
1: बिल्कुल
0: दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि
1: बिल्कुल
0: अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो खुश शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं, जब हम अपनी आदतों अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें, कहा भी गया है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आच रही ते नर न घनेरे, है
1: क्या
0: ना।
1: बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में, जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात
0: क्या
1: है, बहुत
0: बात है,
1: सुंदर बात लिखी है।
0: बिल्कुल
1: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक है ना नंदाकिनी जी
1: हाँ बिल्कुल
0: कि हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है ना।
1: बिल्कुल
0: तो ये सफल, आप हंस रहे हैं ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात, है ना।
1: है। और ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जिस
0: जी
1: खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती
0: बिल्कुल।
1: है
0: तो
1: ना।
0: चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं।
1: हाँ
0: हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत के उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
1: तो राधिका घई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी हैं और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला हैं। और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉप क्लूज की सह संस्थापक हैं। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं।
0: जी, और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं। सॉरी, हाँ
1: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया।
0: जी, और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
1: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो
0: जी
1: राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉप क्लूज की स्थापना की, और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था।

0: छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। शॉप क्लोज ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया
1: जी। और कंपनी की खासियत ये थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहाँ ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध

0: लेकिन हाँ उन्होंने हार नहीं मानी
1: जी
0: और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया
1: बिल्कुल।
0: भी।
1: और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है।
0: बिल्कुल
1: और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में, और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, सीएमओ एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और सीईओ इंडिया अवार्ड 2016 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: तो मंजरी अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: ये कसम कसम से लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
2: हाँ तो मंजरी हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
3: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं,
2: वो कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है,
3: वो कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते
2: विश्वास कर लेते हैं।
3: तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
2: ऐसे कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है
3: जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए ना, वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना। कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी है तो क्यों आप उसके उस पे जाते हैं।
2: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमगम
3: बिल्कुल,
2: कि आप खुद अच्छे बने है ना, खरा सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
3: बिल्कुल सही बात है।
2: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है
3: जी। और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई भी जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
2: बिल्कुल पड़ता
3: है। सबसे पहले तो इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे डिगा नहीं सकते जिसे कहते हैं।
2: अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला इधर इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
3: थाली का बैंगन जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
2: उधर उसकी बात सुन ली, उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
3: बिल्कुल
2: कुछ नहीं रहा। तो आपका जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करेंगे, नहीं ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
3: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी।
2: बिल्कुल बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता की कई बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
3: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे हैं कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए।
2: ऐसे लोग गोपनीयता जो बातों की होती है दो दोस्तों के बीच में उसको भी वो हटा देते हैं।
3: मतलब दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और अपना मतलब निकालने के लिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए।
2: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते हैं।
3: जी, सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजे। एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
2: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुन
1: अच्छा,
0: करके।
1: क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहाँ ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रख दो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा
1: मौसमी
0: दिए
1: फल
0: जाते
1: थे
0: थे,
1: जो।
0: मौसमी
1: हाँ
0: फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बाराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे, तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में
1: हाँ
0: अक्सर होते
1: होते
0: थे।
1: हैं बिल्कुल।
0: और
1: और ये एक रोचकता
0: जी
1: बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है
0: बड़ा
1: शादी विवाह में,
0: बहुत
1: जब इस
0: अच्छा
1: तरह
0: माहौल
1: की
0: होता था। और
1: छुटपुट मजाक होती
0: जी,
1: है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो, शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल
1: पर बड़ी
0: लगाना नहीं है।
1: सादगी से वो जनवासा होता
0: हाँ,
1: था, दिखावटी दिखावट
0: दिखावटी
1: कहीं
0: नहीं
1: नहीं
0: होता,
1: थी।
0: मतलब
1: हाँ
0: अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी
1: हाँ
0: वही
1: होते
0: लोग
1: थे।
0: होते थे।
1: हाँ
0: और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे, तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस हैं, इसमें तो 6 पीस हैं, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह के भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका
1: बिल्कुल
0: भुगतान जो
1: वे
0: कहते हैं ना, वो लड़की वालों
1: लड़की
0: को
1: वाले
0: करना
1: ही करते थे।
0: पड़ता था।
1: हाँ बिल्कुल
0: जी,
1: सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गांव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी, बड़ी यादें हैं सबकी।
1: बिल्कुल आपने कहा, और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं को जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ जनवासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन
0: बिल्कुल
1: जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी कई
0: बिल्कुल, वो
1: बार।
0: अपने हिसाब से देखिए सब
1: हाँ
0: लोग अच्छा ही करते थे,
1: बिल्कुल, और मन से
0: मन
1: व्यवस्था
0: से
1: होती
0: करते थे,
1: थी।
0: और जिसको
1: हाँ
0: कमी निकालना है वो तो निकालता ही है।
1: हाँ
0: और वही एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस
1: बिल्कुल,
0: तरह के भी उनको
1: रूठने
0: सुविधाएं।
1: मनाने की जो
0: हाँ
1: बातें भी बहुत होती थी,
0: बहुत
1: कोई नाराज हो
0: होती
1: जाता था
0: थी
1: उसको मनाया
0: बिल्कुल।
1: जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा, इसलिए
0: तो
1: फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि
0: जी
1: वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते
0: जी
1: थे ना।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी, जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं, और वे दूल्हे, समधी, दूल्हे के पिता, फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बारातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता है, जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे, क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, बड़ा मजा आता था।

0: लेकिन वो गाने बहुत अच्छे
1: हाँ,
0: थे,
1: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
0: जान होते थे, सही
1: एक
0: बात
1: श्रोता
0: है।
1: लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है, बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है, जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं। तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बाराती हो तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग, बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत
1: कर
0: करना आते थे।
1: देते
0: बिल्कुल।
1: थे। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है, जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी, उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था, जिसमें से जनवासे में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे, जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है, या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है, कितनी दूर है, और वहाँ पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा,
1: नहीं
0: ये
1: खड़ा
0: सब
1: है,
0: भी चीज़ें होती
1: बिल्कुल
0: थी।
1: बिल्कुल,
0: और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना,
0: हाँ
1: हर चीज प्रोवाइड कराना,
0: बिल्कुल।
1: हर पूरा एक
0: और
1: जिम्मेदारी
0: बड़ा
1: बन
0: मजा भी
1: जाती
0: आता
1: थी।
0: था कि भाई
1: हाँ
0: अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूरी गरम क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं
1: मिल
0: परसा
1: रहा
0: जा रहा है। तो
1: है,
0: इस तरह की जो थोड़े बहुत होते थे
1: चूहलबाजी भी होती
0: चूहलबाजी
1: थी।
0: टाइप की भी
1: हाँ
0: होती थी, तो बड़ा
1: बिल्कुल
0: यादगार दिन है वो।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है तो
1: हाँ अब
0: सब,
1: वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि
0: हाँ
1: होटल भी दूर दूर होते हैं
0: बिल्कुल
1: और अभी कई चीजें बदल गई
0: बदल
1: हैं।
0: गई।
1: वो
0: होटल में एक साथ
1: चीजें,
0: खाना
1: शादियां
0: खा
1: भी
0: रहे
1: होटल
0: हैं
1: में हो गई हैं,
0: जी,
1: घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहां बैठकर गीत गाए जाते थे,
0: बिल्कुल
1: पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए
0: सारे
1: जाते थे,
0: कार्यक्रम।
1: तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं
0: लेकिन मुझे
1: जिसका।
0: तो वो जनवासे वाले दिन बहुत याद आते हैं।
1: बिल्कुल याद
0: तो
1: आते हैं।
0: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर
1: हाँ फिर
0: बाकी
1: बात
0: संदेश
1: करते हैं,
0: लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे
0: अरे
1: याद है कि एक बार जन्मासे में मुझे अकेला छोड़ कर खाने चले गए तो हमने
0: कैसे
1: आंख बंद कर लिया, अंधेरा था चारों तरफ, तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके।
0: हुए
1: बाद में
0: हैं?
1: जो भैया लोग छोड़ के गए थे उन्हें बहुत डांट पड़ी तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जन्मासा जिसे जन्मासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो
0: हाँ
1: जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जन्मासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: सही
1: सही
0: कहा।
1: बात
0: हाँ,
1: है।
0: मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा, यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गांव में महीने में शादी थी। एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए। रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान शौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने हुए
1: बिल्कुल।
0: थे।
1: और जन्मासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया है कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जन्मासे के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जन्मासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते जा रहे गर्म पानी समझ के ही पी लो तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक अलग
0: मजा था।
1: मजा था।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ जनजान अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा ये जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही
1: जी
0: निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी, या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी जी,
0: हाँ
1: तो वो तो किसी और का बगीचा है,
0: हाँ
1: अब
0: हाँ
1: आम लगे हैं,
0: हाँ
1: अब बाराती लगे तोड़ने में, अब
0: हाँ
1: वो फिर झगड़ा मच रहा है तो
0: हाँ
1: मतलब आप बारातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा आ रहा है, तो इस तरह के बड़े
0: रोचक किस्से
1: रोचक
0: जनवासी
1: किस्से
0: की
1: हो
0: दुनिया
1: जाते
0: से
1: थे।
0: जुड़े हुए हैं। बिल्कुल,
1: जी
0: आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं।
1: जी
0: और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: खुशबू महक रही है सांसों की रागनी में, कभी कभी ऐसा।
2: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है, है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: आज फिर से ताजा हो गए। ताजा तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माई गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की, इस
1: धन्यवाद।
0: मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है।
0: जी
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट। और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी, जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज अ स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो
0: बात
1: थैंक
0: है,
1: यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट
0: अपने ही
1: गिफ्ट।
0: परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से।
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बैक।
0: यहां एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी
1: पंडित अमरनाथ
0: गायक पंडित अमरनाथ जी
1: जी
0: से
1: नहीं,
0: अलग
1: अलग
0: हैं।
1: हैं, बांसुरी वादक
0: जी बिल्कुल,
1: पंडित
0: बांसुरी
1: अमरनाथ
0: वादक
1: जी,
0: पंडित
1: बांसुरी
0: अमरनाथ
1: वादक
0: जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से
1: जी
0: भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी। पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की,
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। अब बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है,
0: जी
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालने ही मुश्किल हैं, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफ़ी है।
0: और इन
1: उन
0: रागों में
1: पे
0: वाद्य वृंद
1: वाद्य
0: बनाना
1: वृंद बनाना, वो भी
0: और
1: उनके
0: भी बड़ा
1: चलन के
0: काम है।
1: आधार पे।
0: जी
1: अब सा रे ग म प ध नि ज नि द प म ग रे ज, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ
0: ये मायने रखता
1: अस्सी
0: है।
1: आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने
1: नगीने हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के, अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु, ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं, और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे, हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पा धा नि सा और SRGM, सारे गामा
0: अच्छा,
1: पा धा,
0: दोनों नोटेशन कर देते वो।
1: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे।
0: जी,
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे 3 भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूज़िक में नहीं हैं, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारस नाथ। तो हम 3 भाई हैं, और 2 म्यूज़िक में हैं, 1 म्यूज़िक में नहीं है। तो
0: जी
1: मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई।
1: बुनियाद पक्की हुई एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूं कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
1: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
0: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद तो जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुंबस।
1: अभी आर्टिस्ट है
0: हाँ
1: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो तो
0: जी,
1: और भी बदमाश
0: और
1: होता
0: भी।
1: था। हम
0: तो आप
1: लोग
0: क्या कारनामे करते थे?
1: करते थे बचपन में काफी।
0: शर्मा बता
1: हाँ थोड़ा सा
0: रहे
1: शर्मार हो गया,
0: थे।
1: बट हाँ बदमाशी करते थे।
0: बगीचों से आम चुराए, चोरी से
1: बहुत
0: फिल्में
1: चुराए,
0: देखी है।
1: बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है, प्रिंसिपल
0: ओहो हो,
1: को भी थोड़ा परेशान किया है।
0: थोड़ा
1: हाँ इतना थोड़ा कि उन्होंने
0: घर शिकायत भेज दी।
1: घर, शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया
0: अरे बाप रे।
1: था।
0: फिर
1: फिर पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
0: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो
1: आपने
0: खतरनाक
1: पकड़
0: वाला किया
1: लिए,
0: होगा।
1: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे। मैं
0: जी।
1: बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने। इसको कर्मा बोलते।
0: अच्छा वापस आ गया।
1: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम में। हाँ
0: जी
1: तो बदमाशी की है सर।
0: हाँ।
1: हाँ कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
0: जी
1: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
0: अच्छा।
1: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे,
0: जी,
1: बहुत स्ट्रिक्ट
0: और जमाना भी सख्ती का
1: थे,
0: था।
1: बहुत ज़्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज़्यादा। सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल, कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुँचे
0: कहीं और
1: नहीं।
0: पहुंच गए।
1: तो ऐसी बदमाशियाँ रहीं, फिर खेलने चले गए,
0: जी
1: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियाँ की हैं बचपन में।
0: हाँ।
1: और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको, अगर पता चल गया
0: तो क्या
1: तो
0: हाल
1: बाप
0: होता?
1: रे, दुनिया अलग और मैं
0: कितना
1: अलग।
0: सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
1: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था,
0: जी
1: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है। मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ।
0: जी ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला

0: चलता रहा।
1: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि वो एक करेक्ट एज है
0: जी,
1: अनुशासन में रहने का। जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में वो, भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
0: क्या प्यारी बात बोली है जी।

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीज़ें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीज़ें मैंने तब रियलाइज़ की कि कुछ चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4 साढ़े 4 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ, बड़ा हमें लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है,
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी
0: ये
1: होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए उनकी एज थी 104 साल।
1: ओ हो, गजब
0: ही वॉज ए मिलिट्री गाय
1: जी
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और
1: जी
0: इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके,
1: ओके
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के। और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको उसने छुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, ही सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे
0: शहनाई छोड़ी नहीं, उन्होंने रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने,
1: फौज में होते हुए भी।
0: हाँ
1: वाह वाह वाह,
0: शहनाई। और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी,
1: त्रिपुरा बांसुरी,
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में,
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी
0: हमारी, ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ माउथ होल के पास,
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से,
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और
1: जी
0: यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में, हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है
1: जी
0: नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं,
1: जी
0: पंचम हम
1: बिल्कुल
0: होल यूज नहीं
1: यूज
0: करते।
1: नहीं करते हैं।
0: तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा और बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी,
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: अद्भुत बांसुरी,
1: अद्भुत
0: उनका
1: बांसुरी
0: आशीर्वाद है,
1: जी।
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा
1: वाह
0: मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था,

0: 4 बजे हम तीनों को उठा देते थे वो। हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के, सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है, वो रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है। ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था,
1: जी जी
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुरों से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह
0: तो सा सा सा रे गा मा पा दा नी सा नी रा मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के, जा

0: तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है, क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बचपन
0: वो
1: की नींद,
0: चार
1: बिल्कुल
0: साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है। उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली,
1: जी,
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
1: खतरनाक जी।
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ।
1: जी,
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया, 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4-4:30 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10-10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11-12-13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह,
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके, दिन भर आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, वो कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं, अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से ही डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक,
1: ओ हो, तो सारी रात जागना है
0: पूरी सारी लाख जाग गए,
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल थे। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज करते
0: अनुशासन से,
1: हुए,
0: रियाज करते
1: अनुशासन
0: हुए
1: में,
0: अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूँ यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया,
1: जी
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी,
1: जी
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी,
1: जी
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो, जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल।
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है
1: बिल्कुल।
0: ये, और मैं एक ही हैं। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ, और एक साज की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के साज की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस साज से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी,
0: जी
1: उस पर कोई धुन बजाएं, और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद
0: जी
1: का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूं,
1: जी
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का,
1: जी
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी,
1: जी जी
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे, देखो
1: जी जी जी
0: ऐसे बजाते हैं,
1: समझ गया।
0: देखिए, तो एक होती सीधी बांसुरी आपने
1: हाँ,
0: देखी होगी, ऐसे
1: और
0: शहनाई की
1: ये
0: तरह बजाते हैं,
1: जी जी जी
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी,
1: जी
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं, तो ने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी, इसको
1: हमेशा।
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी,
1: हाँ
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं।
1: जी
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे। इसका ये पंचम का हुल है
1: जी
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरह के।
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि आप देखिए, इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपने नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना, ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते हैं लोग।
1: जी
0: आप सोचिए, ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ,
1: जी बिल्कुल
0: इसमें दो चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ
1: हाँ बिल्कुल
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का ही नोट
1: हाँ
0: है,
1: बिल्कुल है
0: ठीक है
1: आखिर में।
0: ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है
0: हमने तो बचपन से देखा है,
1: जी
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है। तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है, तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए।
1: आप माध्यम है
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान हैं,
1: जी
0: आप भगवान नहीं है। आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले। जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही
0: तो हमने तो बचपन से ही देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, मैं जो
1: जी
0: भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं तो
0: इसका
1: आप
0: साउंड क्रिएट नहीं कर पाता।
1: जी तो आप
0: ये
1: अपनी
0: मैं
1: कृष्णा
0: लाया इसलिए
1: बांसुरी
0: हूँ,
1: बजाइए
0: मैं
1: जी
0: लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर
1: साथ
0: मेरे
1: चले।
0: हमारे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है ये,
1: वाह
0: हमेशा।
1: क्या प्यारी बात
0: हाँ,
1: है
0: ये हम मेरे फ्लूट किट में रहता है।
1: जी जी
0: अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है,
1: जी
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल
1: हाँ है
0: है ना।
1: जी
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का,
1: जी जी
0: पिताजी का भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। अब
1: जी
0: हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
1: बिल्कुल सही
0: वो
1: है
0: देखना पड़ता है।
1: जी
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ,
1: ठीक है और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते
0: मैं
1: हैं
0: फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी
0: आपको।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: SD बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी,
1: जी जी जी
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने,
1: अच्छा
0: बहुत ही छोटी सी। अब जैसे ये चल रहा है,

0: वाह वाह वाह वाह, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत कमाल का किया आपने। ये गाना सुनते हैं।
1: पिया तो

0: फर्जी आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ, जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना,
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी।
0: जी,
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है, खाता
0: शिशु
1: रहता
0: होता
1: है,
0: है जब
1: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता, मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: हाँ, वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं। तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
0: जी जी जी
1: उस वक्त वैसा नहीं था, तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही, मैंने दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे,
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक? गजब।
1: वो ये आशीर्वाद है।
0: जी जी जी
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या उनके सवाल
0: पीने
1: भी
0: जाई
1: जी,
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी,
1: उस वक्त, म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से उतना था, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से, मतलब सुनने में और करने, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं हमें रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं, मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माताजी और दादी जी, वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर के में मिठाई, तो पहले बाहर से नहीं आता था मिठाई,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर,
0: और वो ठेठ बनारसी,
1: ठेठ बनारसी, तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।

0: गजब।
1: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता था, तो रेडियो में सब पुराने गाने लता जी के, खयाम साहब के, रफ़ी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं। तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा,
0: जी,
1: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता,
0: हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
1: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना,
0: जी
1: वो तब
0: जी
1: का सुना हुआ है,
0: गजब।
1: तो वो जहन में, वही मैंने कहा ना बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूं, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करता हूं, वहां बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना है। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है एक वो,
0: होली आई रे कन्हाई।
1: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था तो
0: जी,
1: वैसा था, तो फिर आए दिले नादान,
0: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान
1: हाँ,
0: फिल्म
1: रजिया
0: का गाना।
1: सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो,
0: बिल्कुल।
1: ओ हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम,
0: जी।
1: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन
0: अरे बाबा,
1: और गुजुटी सेनाई, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स, प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
0: अच्छा,
1: बहुत शौक,
0: क्या बात
1: एंड
0: है।
1: आई वॉज दी बेस्ट प्लेयर
0: अरे
1: इन द
0: वाह,
1: टीम,
0: तो
1: यस।
0: आप बॉलर थे या आप
1: मैं बॉलर ज़्यादा
0: ऑलराउंडर
1: बेहतर
0: थे?
1: था,
0: अच्छा।
1: ऑलराउंडर ही था ज़्यादातर, बट ज़्यादा बॉलर वाला काम था मेरा,
0: क्या बात है,
1: था
0: तो फास्ट बॉलर थे।
1: फास्ट बॉलर लाइक अ शोएब अख्तर।
0: वाह वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
1: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
0: जी,
1: नहीं।
0: लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
1: विरोध ये था कि अब जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में,
0: खेल रहे हैं तो फिर
1: फिर
0: बस
1: खेल रहे तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं।
0: डरते डरते।
1: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब, तो
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगह है कहाँ,
0: हाँ,
1: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले
0: बस
1: ही गए बस,
0: जुनून के तहत खेल
1: हाँ,
0: रहे हैं।
1: वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी, और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
0: उनके
1: जैसे
0: मुकाबले।
1: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है,
0: बिल्कुल।
1: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है, उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा रहता था, तो दिन भर चला जाता था उस जुनून में, फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले तो
0: ये
1: मजाक,
0: भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती
1: हाँ,
0: होगी।
1: महंगी पड़ती थी।
0: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
1: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही दे
0: इशारा
1: दिया था,
0: किया।
1: इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे,
0: अच्छा, ये कोर्स से बाहर का सवाल है।
1: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस,
0: फिर वापस ले आए।
1: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों,
0: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते
1: हाँ, स्टूडियो चलते हैं ना
0: स्टूडियो
1: तो
0: चलते।
1: मजा आता
0: आकाशवाणी के गलियारों से
1: है।
0: जुड़ी यादें बताई।
1: हाँ
0: पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
1: हाँ वहां पे
0: उनके
1: क्या,
0: साथ जाते होंगे आप स्टूडियो।
1: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था,
0: अच्छा, हाँ
1: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
0: हाँ
1: जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे
0: जी,
1: दादाजी, अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मज़ा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज़्यादातर, दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा, अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
0: जी।
1: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी है, तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का, तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। आप सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है,
0: हाँ, कंपोजिशन.
1: कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
0: बिल्कुल.
1: तो उस वक्त क्या होता था सर कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मज़ा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीज़ें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी,
0: जी
1: और ये सब तो दुनियादारी की चीज़ें हैं, ये आप घर पे नहीं सीख सकते,
0: नहीं, बिल्कुल नहीं.
1: ये आपको घर से चौखट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसेयर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सब सबका ख्याल रखना, और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो,
0: जी,
1: तो पूरा एक हमारा चक्कर घूम
0: चक्कर
1: जाता
0: लगता
1: था। तो वहाँ फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, वो जो वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं इतने प्यारे हैं तो इनको एक तरीका बता दो, और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए, तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं, तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द
0: चेंजेस
1: म्यूजिक
0: अकॉर्डिंगली.
1: मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली, एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
0: क्या बात
1: तो
0: है.
1: वो एक बड़ा, शाम को फिर एक अलग माहौल होता था उनके, जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
0: हाँ,
1: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
0: बिल्कुल.
1: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज़्यादा फीलिंग से ज़्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए
0: इतने सारे लोग
1: इतने
0: हैं.
1: सारे लोगों के बीच में, तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं, तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादातर,
0: गजब. यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत था.
1: वही था वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

0: तो सुनिए उनकी तरह सौ अशारह दो मेगा हर्ट से लाइव स्ट्रीमिंग जरिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप से आकाशवाणी पटियाला। तो इन पेशा जी प्रोग्राम गल्ला चो गल अज का प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ मैं थोड़े ना रूबल तो मेरे नाल ने
1: मनदीप मसान।
0: जी। मनदीप की हाल चाल है?
1: बहुत वधिया रूपल जी, तुसी सुनाओ, वधिया हाल
0: मैं
1: चाल
0: भी
1: तुहाडे?
0: हाँ जी बिल्कुल। तो अज आप कि विषय पर अपने विचार सांझे कर रहे हैं साढ़े श्रोतिया नाल?
1: मैं तुहानू कुछ लिखिया होया सुनाउनी आ, गल वकड़ी है। कुछ गल्लां गल वकड़ियां बन जांदियां जो उम्र भर दी मुस्कुराहट दिंदियां, कुछ गल्लां सारी उम्र दा जहर बन जांदियां ने, जो ना गल चों उतरदियां ते ना उगलियां जांदियां। कुछ गल्लां सारी उम्र दे रिश्ते बना जांदियां ते रिश्ते नूं गल्लां ही सांभ लैंदियां। गल्लां करदे रिहा करो, वगदे रिहा करो, ढिड रखियां गल्लां दम घोट के मार जांदियां ने
0: वाह जी वाह, बड़ी
1: जी।
0: वधिया गल है ते।
1: तां गल्लां जिहड़ियां हैगियां ना रूबल जी, कि किसे नाल साडा बोल चाल, किसे नाल गलबात करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी है साडी लाइफ दे विच। ते जदों भी असीं किसे दे नाल विचरदे हैगे आ, तां साडा किसे दे नाल गलबात करन दा जिहड़ा ढंग हैगा, उही सानूं सही मायने दे विच इह दर्साउंदा हैगा कि तुसीं कित्थे कि स्टैंड करदे हो।
0: जी तुसी किस तरह का इंसान हो।
1: बिल्कुल, क्योंकि तुसीं देखदे हो कि हर रोज़मर्रा दी लाइफ दे विच जदों भी इंसान अपने घर तों बाहर निकलदा है, तां उसनूं बहुत सारे इंसान मिलदे हैगे आ। चाहे असीं कहीए कि अपने घर तों बाहर असीं अपने गली गवांढ दे विच वी जांदे आ, फिर अपनी
0: जी
1: सोसाइटी छड्ड के बाहर जांदे हैगे आ, है ना। फिर जिन्हां ने ट्रैवल करना हुंदा तां उत्थे वी काफ़ी तरह के लोग
0: रस्ते
1: मिलते
0: काफी
1: हैं।
0: होंगे जी।
1: तां इसी तरीके दे नाल जदों असीं इक वर्किंग एटमोसफेयर दे विच आ जांदे आ, तां उत्थे साडे कुलीग हुंदे आ, नाल काम करन वाले हुंदे हैगे। तां डिपेंड करदा हैगा कि तुसीं किसे नाल किवें डील करदे हो, ते सामने वाला जिहड़ा तुहानूं मिल रिहा हैगा
0: जी
1: उहदा किद्दां दा असीं कहीए कि बिहेव हैगा, जां उहदा किद्दां का आचरण हैगा, उह पता लगदा है उस दी गल करन दे
0: तरीके
1: अंदाज़
0: ना
1: तों
0: जी
1: जी।
0: बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना भी कईयों के तो बोल बिल्कुल मिठे होंगे है, तो
1: जी
0: कई वो जी कहते हैं भी कन्ना च कई बार आवाज़ सुन के मिश्री घोल देंगे है ना, तो
1: देखो,
0: कई जड़े होंगे वो ठा देने गल मुँह ते मारते हैं
1: ठा दे रहे गल मुंह ते
0: तो
1: मारनी इक डिफरेंट चीज़ है ना। आपां कह दिंदे हां वी ठीक है, वी इस बंदे दे ना दिल दे विच कुछ नहीं हैगा, ते इस करके इस नूं आदत हैगी है वी इह
0: साफ
1: गल
0: स्पष्ट कह दिंदा
1: साफ
0: है
1: ते
0: जी।
1: स्पष्ट कह दिंदा, उस गल दे विच सानूं घट गुस्सा लगदा है। पर कई वारी सानूं इहो जिहे लोकी भी मिल जांदे आ जिहड़े आप तां टॉक्सिक हुंदी हैगी है, जिन्हां दियां नैगेटिव वाइब्रेशनस इन्नियां ज़्यादा हुंदियां कि उह अचानक तुहानूं मिलदे आ, कदे उहनां नाल पहला वाह वास्ता नहीं हुंदा, ते उह जदों तुहानूं मिलदे हैगे ते उहनां नाल पहली मुलाकात ही इहो जिही हो जांदी है कि उह तुहाडे जिहड़ा हैगा तुहाडा आपदे ऑरे नूं वी जिहड़ा हैगा नैगेटिव
0: नेगेटिव
1: कर
0: कर
1: जांदे
0: देंदे
1: हैगे।
0: बिल्कुल। मनदीप कहिंदे जदों आपां किसे नूं मिलदे हां ते कई वारी इह चीज़ हो जांदी भी इक वारी आपां बंदे नूं मिले हां ते असीं अगली वारी सोच लैंदे भी नहीं हुण जिंदगी च इहनूं कदी नहीं मिलना है ना,
1: इमेज माइंड दे विच
0: इमेज
1: बन
0: बन
1: जांदी
0: जाती।
1: है।
0: और दूसरी जिहड़ी तुसीं वाइब्स की गल कीती ते बिल्कुल सही है, सानूं उस तों वाइब्स ओहो जिही आ जांदियां कि इह तां बंदा बहुत नैगेटिव है ते इहने साडे नाल गलबात कीती है, जां साडी थिंकिंग भी ना उधरले पासे ही चलन लग पई है,
1: बिल्कुल,
0: उसे तरह ही नैगेटिव हो जांदी है।
1: तां रूबल जी इही गल वैसे असीं पढ़दे भी हाँ, सुनते भी हाँ, भी जदों भी किसी नूं मिलिया जावे तां तुहाडे चेहरे दी जिहड़ी मुस्कुराहट है उह बहुत जरूरी हैगी है। तां इस करके कोशिश करिया करो जदों भी, चाहे असीं किसी नूं भी मिलिए, चाहे कोई अनजाण हैगा, तां एटलीस्ट तुहाडी पहली मुलाकात इहो जी नहीं होनी चाहीदी
0: जी
1: कि उह उसे उपर इहो जिहा प्रभाव छड्ड के जावे जिस करके उह दोबारा कहे कि मैं तुहानूं जिंदगी 'च कदे ना मिला
0: जी तो वो कहते हैं ना कि मतलब जे तुसी किसी नूं इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी,
1: जी।
0: तो इसलिए अगले नाल जे तुसी वधिया ढंग नाल गलबात करोगे तो अगला भी अगली वारी तुहानूं मिलन लई उतावला होएगा है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: जी
0: तो वह भी इन्हां गल्लां दा ध्यान रखेगा। तो सुनवा दीजिए एक गीत,
1: जी
0: आओ सुनते हैं जी सतिंदर सरताज की आवाज़ विच एक गीत।

0: तिरुबल जी, एक बड़ा प्यारा शेर है।
1: हम्म,
0: हमने सोचा था उसे इस कदर भूल जाएंगे, हमने सोचा था उसे इस कदर भूल जाएंगे, देखकर भी अनदेखा कर जाएंगे, लेकिन जब जब सामने आया चेहरा उनका तो सोचने लगे, इस बार देख लेते हैं अगली बार भूल जाएंगे।
1: जी
0: तां ये गल हैगी है कि जदों कोई किसी नू प्यार करता है, मोहब्बत करता है ना,
1: पर मनदीप
0: तां
1: जी वही है ना, जड़ा प्यार तो ठीक है
0: हाँ
1: बट कदर भी जड़ी वो नाल होनी चाहिए है ना, कला प्यार
0: वही
1: कुछ नहीं कर
0: वही तो गल है। हुण
1: सकता।
0: ओह तां सोची जांदा वन साइडेड, तो यही गल है कि भी चल अज भुल जाने हैं, कल भुल जावांगे, है ना, नहीं अगली बारी भुल जाएंगे। तां ये चीज़ हैगी भी एक इंसान है ना तुहाडे नाल प्यार करके मोहब्बत करके टिकिया होया, तो दूसरा इंसान उस चीज़ की कदर नहीं
1: कदर नहीं
0: करता,
1: करता
0: वैल्यू नहीं पाता हैगा।
1: जी।
0: तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता हैगा कि असी किसी नूं जेकर कोई साडा कर रिहा हैगा तो एटलीस्ट सानू समझना चाहिए हैगा
1: जी
0: जी।
1: असीं टाइम रहिंदा, पहलां तां समझदे नहीं आ, फिर जदों तक समझ आउंदी आ तो बहुत देर हो चुकी हुंदी है।
0: पर रूबल जी, मैनू एक गल होर भी लगती हैगी है कि देखो जिवें वो अपनी पंजाबियां वाली जिहड़ी कहावत हैगी है भी
1: जी
0: साडा कुत्ता कुत्ता है ना वो ते
1: हाँ
0: तुहाडा कुत्ता
1: टॉमी।
0: टोमी, तां जदों किसी भी इंसान नूं महसूस हुंदा है तां इह तां हो नहीं सकदा भी उहनूं पहलां दिखदा नहीं हुंदा जां उहनूं पहलां समझ नहीं हुंदी, बस
1: जी
0: गल इह हुंदी है कि उह सानूं लाइटली लैके चल

0: जी मनदीप जी, जिवें आपां गल कर रहे सी कि कदर दी है ना, कि लोग कदर
1: जी
0: नहीं करते, ते वो कदर दे चक्कर च, असी अपनी कदर करवाउण दे चक्कर च ना कई बार की होंदा है कि असी किसी नूं ना भी नहीं करते, है ना, भी किसी ने सानूं कोई काम कहता
1: जी
0: ते जे असी मतलब साढ़े तो नहीं हो पा रहा, या असी वो नहीं करन दे लायक हैगे, है ना, तां भी असी सानूं हुंदा भी चलो हाँ कह दिंदे हां कोई नहीं, असी मतलब कि जिवें मर्जी औखा सौखा हो के कर दांगे,
1: हाँ,
0: है ना।
1: अपने आप भी असीं कष्ट सह लैंदे हाँ, पर सामने वाले नूं दी गल नूं असीं एक्सेप्ट कर लैंदे हाँ
0: जी
1: जी।
0: सानूं लगता भी अगला बुरा ना मान जाए, है ना, या साढ़े बारे की सोचेगा, या सानू स्वार्थी ना कहे, है ना, ये चीज़ें असी सोच लैने हैं। पर कई बारी जेड़ा काम असी जे नहीं कर सकते, असी फिर भी उसके लिए हाँ करते, तो तुसी असी ये नहीं सोचते भी साढ़े लिए किन्नी परेशानी बन सकती है,
1: जी
0: ना सिर्फ इस चीज़ लिए कि असी वो काम करन दे समर्थ हाँ कि नहीं हाँ, बल्कि मेंटली भी, क्योंकि असी टेंशन लैके बैठ जाने, स्ट्रेस ले लें भी ये काम किवें हो पाएगा, है ना,
1: सही है,
0: तो जे मेंटली स्ट्रेस आता तो वह फिर साड़ी फिजिकल हेल्थ से भी इफेक्ट जोड़ा वो पैदा।
1: बिल्कुल जी। ते ये भी कोई पता नहीं भी जेडे काम लई हाँ कीती हैगी है वो काम भी उदों तक सिरे चढ़ा के आपां नेपरे चढ़ा के अगले नूं
0: दे
1: खुश कर
0: पावांगे
1: पावांगे कि नहीं
0: जी
1: करना। कई बारी इदां ही हुंदा रूबल जी कि कई बारी इन्हां चीज़ां दे नतीजे ज़्यादा साडी सोच तो ज़्यादा गलत भी हो जांदे है ना। असीं पहलां कह दिंदे आ पर सामने वाले दा दिल रखण लई कीती हुई इही गल बाद दे विच साडे नुकसान दा कारण भी बन जांदी है,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि कई सामने वाला इस गल ते बाद च एग्री नहीं ना करदा।
0: तो इसलिए जरूरी है भी जी, जिहड़ा काम असी नहीं कर सकते या साडे करन दे लायक नहीं है, तो उहनूं ना कहना भी सीखो।
1: जी
0: हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए भी अगला साडे बारे की सोचेगा, सानू अपने आप बारे भी सोचना चाहिए।
1: जी
0: ते जरूरी नहीं कि जिवें आपां पहलां गल कर रहे सी कि मूंह ते पटाक देने मारो, है ना, अगले
1: हर
0: नूं
1: एक
0: तुसी
1: चीज नू कहन दा एक तरीका
0: तरीका
1: हुंदा
0: होंदा, है
1: हैगा
0: ना, तुसी ये कह सकते हो भी असी सोच के दस्सांगे, जां सानू थोड़ा
1: जी
0: वक्त दियो, है ना,
1: जी
0: ते हौली हौली अगले नूं कह दो भी साडे जिहड़ा गल नहीं बन पाई साडे तो, है ना, ते तुसी उस तरीके नाल भी ना कर सकदे हो, ते घट जिहड़े शब्दां च आराम नाल जिहड़ा है वो भी ना कहा जा सकदा है भी
1: बिल्कुल
0: साडे तो काम नहीं हो पाएगा,
1: जी
0: ते बहुत सारे तरीके होंदे, ते ना कहना जिहड़ा अपने लिए भी ठीक है, हेल्प करो जरूर, जिथे तुसी कर सकदे हो जरूर करो,
1: जी
0: पर जिथे नहीं हो सकते, जिहड़ा काम साडे वास्ते नहीं है, तो उत्थे ना कहना भी बहुत जरूरी हो जाता है।
1: बहुत जरूरी है जी। तो सानू ये भी सीखना पैना रूबल जी, क्योंकि असी हजे भी ना कई वारी साडे उही घरां दा प्रेशर जां असी रिश्तेदारियां दे प्रेशर दे विच तुसी देखिया कि कई रिश्ते इन्नी घुटन च हुंदे आ सिर्फ ना ना कहण
0: बिल्कुल।
1: है ना। आपां कहिंदे ने वी जवाब किवें देईए, जवाब दित्ता नहीं जा, उस तो बाद अगले दे घर दे विच कलेश पै जांदा उस गल नूं लै के, है ना। तां किन्ना वड्डी चीज़ हैगी है कि सामने वाले नूं भी समझना चाहिए कि जेकर कोई जवाब दे रहा हैगा तां उसनूं उस दी हर एक इफेक्ट नूं समझा दित्ता जा सकदा है,
0: जी जी जी
1: जे इन्नी क समझण शक्ति सारिया के बीच मेरे ख्याल च होंगी हैगी
0: क्योंकि वो ना जो तुसे दिल च दबा के रख लोगे तो कितने ना कितने तो निकलेगा ही,
1: निकलेगा ही।
0: कदी ना कदी तो, है ना जी। आओ सुनते हैं हरजीत हरमन नू।

0: ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਰਾ 2 MHz ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਐਪ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਠੀਕ 6 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ
2: ਅਰੋੜਾ
1: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
3: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
4: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। IPL क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया

0: दोपहिया वाहन चलाउंदिया हेलमेट जरूर पाओ।
1: दोपहिया वाहन दे मगर बैठी सवारी ले भी हेलमेट पाना जरूरी है।
0: सड़क ते चलदिया
2: आप भी बचो दूजिया नु भी बचाओ। सड़क सुरक्षा सब की सुरक्षा।
3: ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਗੀਤ, ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ।

दिल ये ज़िद्दी है। जी हाँ दोस्तों, एक ज़िद्द होनी ना बहुत ज़रूरी है। ज़िद्द जितण दी, ज़िद्द कुछ हासिल करन दी, ज़िद्द सुपने पूरे करन दी। ते तुसी भी अपनी इस ज़िद्द नूं पूरा कर सकते हो, अपनी जितण दी ज़िद्द नूं पूरा कर सकते हो। पर शर्त यही है भी तुसी किवें अपनी अवचेतन मन दी जादुई शक्ति दा इस्तेमाल कर दे हो, ते किवें इस जादुई शक्ति नूं इस्तेमाल करके तुसी अपनी तकदीर आप लिख दे हो। हुण जे अवचेतन मन की गल करिए ना, तो अवचेतन मन नूं सरल भाषा विच असी सबकॉन्शियस माइंड भी कह दिंदे आ। ते जे सबकॉन्शियस माइंड की गल करिए, तो सबकॉन्शियस माइंड एक ना डीप ऑटोमैटिक इंजन हुंदा है अपने दिमाग का, जो अपने बॉडीली फंक्शंस नूं ना कंट्रोल करता है। जिदा अपने भाव, अपनियां आदतां ते अपनी लोंग टर्म मैमरी नूं भी कंट्रोल करता है। ते सब तो वड्डी गल कि जिहड़ी चीज़ आपां सोचदे हां या आपां बिलीव करदे हां ना, उसनों फीड करके अपने दिमाग विच रख लैंदा है। तां ही तां कहिंदे नी वी मैनीफेस्टेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ आपां सोचदे हां ना आपां उही बन जांदे हां। जो चीज़ महसूस करते हैं उसी चीज़ नूं अट्रैक्ट कर लैंदे हां, ते जिहड़ी चीज़ नूं सोचदे हां वह चीज़ आपां क्रिएट भी कर लैंदे हां। पर मैनू लगता है कि हुण ना साडे नौजवानों के मन च यह सवाल उठा होगा कि मैनीफेस्टेशन बारे तो असी भी बहुत सुनिया, असी करते भी हाँ, पर ये पिछे का राज की है, ये हुंदा की है, सानू भी ये दसो। हुण इसका उत्तर जानने तो पहला एक गीत सुनते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, असी गल कर रहे सी कि मैनीफेस्टेशन की हुंदी है ना। मैनीफेस्टेशन अते पॉजिटिव थॉट्स अपनी लाइफ नू किवें इफेक्ट करदी है। तां कल्पना करो कि थोड़े हाथ च एक छोटा जिहा बीज है, बहुत ही छोटा जिहा सधारण जिहा बीज। ते जे इस बीज नू सही मिट्टी, साफ पानी अते सही धुप मिले तां इह छोटा जिहा बीज ना एक बहुत वड्डा रुख बन जूगा। ठीक आही काम अपनी सोचन शक्ति भी करती है। एक छोटा जिहा पॉजिटिव थॉट कि हाँ मैं ये कर सकदा, मेरे तो ये हो जूगा, अपनी जिंदगी दा सब तो वड्डा रुख बन सकता है। पर जे दूजे पासे गल करिए तां एक छोटा जिहा नैगेटिव थॉट कि शायद मेरे तो ये नहीं होना या मैं कर ही नहीं सकना, साडी आने वाली अगे आने वाली संभावना नूं भी ये ख़त्म कर दिंदा है। असीं सोचते हाँ ना कि सोचने नाल होगा कि जो अपनी किस्मत च है सानू तो उही मिलेगा, तो फिर आप इन्नी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो मैनू लगता है कि शायद आह सोचना गलत है। दुनिया की हर वड्डी चीज़ पहला किसी के दिमाग विच एक विचार के रूप में ही तो आई सी। तो जे गल करिए किस्मत दी कि जो किस्मत च है सानू उही मिलना है, तो मैं ना थोनों एक कहानी सुनाना चाहनी हाँ। वो कहानी है रब ते इंसान दे विच। तो एक दिन इंसान रब नूं आके कहिंदा कि रब्बा पता नहीं क्यों लोग इन्नी मेहनत करते हैं, जो उन्हां दी किस्मत च उन्हां नूं उही तां मिलना। अगों रब मुस्कुरा के जवाब दिंदा, कहिंदे काका कल तू ही तो मेरे को आया सी, तू मेरे को आया सी कल वड्डी गड्डी मंगण, सुखी परिवार मंगण, नौकरी मंगण, ते पता नहीं की होर। जे ते तैनूं लगदा है कि तेरी किस्मत च जो है तैनूं उही मिलेगा, फिर तू मेरे को क्यों आया। अगों वह इंसान ना चुप कर गया। ते रब उन्हूं देखी जावे ते कहिंदा तैनूं पता है जदों मैं तुहाडी किस्मत दे पन्ने लिख रहा सी ना, तां उदों मैं कई पन्नियां ते लिखता सी एज़ यू विश। तां इंसान हैरान होके कहिंदा कि एज़ यू विश दा मतलब? रब कहिंदा एज़ यू विश दा मतलब कि जो तुसी चाहुंदे हो वो तुसी अपनी मेहनत, अपने पॉजिटिव थॉट्स नाल ज़रूर हासिल कर सकते हो, ते तुसी हर मैदान फतेह कर सकते हो। जी हाँ, इसी दे नाल असीं एक होर सोहना जिहा गीत सुनदे हाँ।
1: ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ

जी दोस्तों, कहते नहीं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचाए। तो थोड़ी ना सोचण शक्ति थोड़ी सक्सैस नाल बहुत इंटरलिंक्ड होंगी है, क्योंकि थोड़ी सोच ही थोड़े सक्सैस पर निर्भर होंगी है। पॉजिटिव सोचने नाल ना इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहता है, तो पॉजिटिव सोच इंसान की जिंदगी विच बहुत जरूरी है। यही इंसान नू हर हालत विच हौसला दिंदा है ते उम्मीद भी दिंदा है। ते जिहड़ा व्यक्ति चंगी सोच रखता है ना, वह हर मुश्किल का सामना बिना डरे कर सकता है। साड़ी अंदरूनी शक्ति ते साड़ा विश्वास यानी कि साड़ा सैल्फ कॉन्फिडेंस भी पॉजिटिविटी नाल बहुत उच्चा हुंदा है। ते इसी सिलसिले नू अगे गलबात जारी करांगे, पर उस तो पहला ना एक बहुत सोहना जिहा आपां एक उस पोएम सुनदे हां, कविता। उस कविता का नाम है उडारी। तो वह इंज है, जा मार उडारी पंछिया हुण का तो तू डरदा है, जा मार उडारी पंछिया हुण का तो तू डरदा है, तू शेर है इस जमाने दा तू गिदड़ा च का तो रड़दा है। जमाना बैठा तेरी हार देखन नू, जमाना बैठा तेरी हार देखन नू, पर तू ये दिल जिद्दी है दे नारे ला, दस दे उन्होंने तू की कर सकदा, चल एक लंबी जी उडारी ला। कर सुपने तू सच अपने, कर सुपने तू सच अपने, चल उठ हुण ना तू ढेरी टा, जमाना उठ आप पिछे आऊगा, बस तू अपने जित दे झंडे लहरा। जमीन भी तेरी आसमान भी तेरा, जमीन भी तेरी आसमान भी तेरा, तू रुकी ना बस चलदा जा, पैर पैर ते रोड़े ने पर इना तो ना तू घबरा। दुनिया याद रखूगी नाम तेरा, दुनिया याद रखूगी नाम तेरा, बस तू अपनी पहचान बना, हारना ता तेरी किस्मत च नहीं, पर यारी तू सिर्फ रब नाल ला। जी दोस्तों, ये लाइन ना बहुत फेमस है कि आई विल नेवर लूज, आई विल विन और आई विल लर्न। ते अगे गलबात जारी करांगे, पर इस तो पहला एक गीत सुनते हैं।

1994, यानी कि 01752280494। इस नंबर उत्ते जब तक तुसी सानू कॉल कर दिओ, असी तुहानू सुनाउणा साडी पसंद है एक गीत, फिल्म ए दिल है मुश्किल विच्चों। आओ सुनदे इस गीत नू।

0: उनको खुशी हो रही थी हमसे बात करके, हमें ही उतनी खुशी होती है।
1: जी
0: जी अनमोल, सत श्रीकाल।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार जी। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ, आप बिल्कुल ठीक हो?
1: बढ़िया बढ़िया।
0: ठीक है जी। तो आपका जी, मैं ठीक हूँ। हाँ जी,
2: मैं तो सुनेहे प्रोग्राम में मैं मैसेज भी करता हूँ ना।
0: ठीक है जी, ठीक है। हमें बड़ी खुशी हुई आपके, देखो पहली कॉल हमारे पास आपकी लगी है, तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा।
1: मैं ना ऐसे
0: अच्छा, ऐप पे
1: पहली
0: सुनते हो?
1: बार कॉल की है,
0: ठीक है, बहुत अच्छा, पहली बार कॉल
1: पहली
0: की है।
1: बार मैंने कॉल की है।
0: जी, तो देखो आपका फोन भी पहला हमारे प्रोग्राम में लग गया।
1: मैंने कभी कॉल नहीं की,
0: ठीक
1: पहली
0: है
1: बार कॉल की है।
0: ठीक है, चलो आप आगे से भी हमें कॉल किया करना, ठीक है?
1: करता
0: ठीक,
1: हूँ मैं मैडम, मेरे को जानते
0: ठीक
1: हैं।
0: है
1: मैडम
0: जी।
2: भी बोलता मेरे को जानते हैं।
0: अच्छा ठीक है जी, मेरे को
2: हाँ
0: बिल्कुल
2: जी
0: समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं। तो
2: हाँ
0: अनमोल,
2: जी हाँ
0: कौन
2: जी।
0: सा
2: कौन
0: गाना सुनना है आज आपने?
2: सा गाना था?
1: कितने मानक था
0: कुलदीप मानक का
1: माँ ने माँ
0: माँ हुंदी है
1: और
0: माँ।
1: सुना था खुद आपके पार्टी तो मेरे
0: ठीक है जी, चलो ठीक है, आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। ठीक है
1: को बोल ना कर
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया,
1: दो। ठीक है
0: धन्यवाद
1: अब
0: जी।
1: कोई टेंशन नहीं, इतने बहुत खुश हो रही
0: जी, हमें भी उतनी
1: मुझे।
0: खुशी हुई आपसे बात करके। ठीक
1: मैं
0: है,
1: ओके एक कौन
0: हाँ जी,
1: एक कृष्ण
2: कॉलर
1: ओके एक
0: हाँ, कॉलर हो आप
1: कृष्ण
0: हमारे कस्टमर नहीं? ठीक है,
1: हाँ
0: हाँ ठीक,
1: सुने बाबू मैं
2: बोला
0: ठीक है, मिलते हैं,
1: पाऊंगा।
0: आपके मैसेज भी मिलते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: ओके
0: ओके, शुक्रिया। तो ऐसे कि जी, अनमोल जी डलहौजी, तो आप सुंदर नदी पसंद हो, आवाज़ है कुलदीप मानक दी।

0: आवाज़ विश्वास अते विरासत ते 90 साल दी कहानी आकाशवाणी।
1: जी साढ़े नाल पप्पू राजा खुशदिल जुड़े सके समाणा तो ते वो सुनना चाहते से कोई पुराना गीत किशोर कुमार की आवाज़ में उन्होंने सुना दिने। किसी कारणवश उन्हों का फोन जड़ा कट गया, आओ सुनते हैं फिल्म कुदरत दा गीत।

0: जो कमान संभालेंगे, और इन लोगों को अभी से जब तक हम नहीं इनको मोटिवेट करेंगे या इनको अंदर से ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करवाएंगे कि ठीक है आप एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन उस एजुकेशन का फ़ायदा भी जब ही होगा जब आप ज़िंदा रहेंगे, और ज़िंदा रहने के लिए आपको साफ़ हवा पानी की ज़रूरत है जो आपकी खुद के एफर्ट से ही आएगी।
1: एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जी रिपुदमन जी, बैक टू नेचर।
2: जी बिल्कुल,
1: हुण असीं जदों भी कितें साडे हथ खड़े हो जांदे ने, असीं बड़े एडवर्सरीज नूं फेस करदे हाँ, तां अक्सर ये टेंडेंसी या अक्सर इस एडवाइस हुंदी है कि वी शुड गो बैक टू नेचर। सो जदों असीं उस बैक टू नेचर वाला कॉन्सेप्ट उहनूं असीं एक्चुअली इंप्लीमेंट करांगे, फिर असीं सारियां चीज़ां दे नाल जुड़ जांगे। और दूसरी गल है अवेयरनेस। सर हुणां ने बड़ी खूबसूरत गल कही कि जो तक तुसी लोकां नूं अवेक सैल्फ अवेकनिंग नहीं करदे। मैं एक छोटा जिहा इंसीडेंट शेयर करदा। असी एक रिसर्च मटीरियल कलेक्ट करन गए हिमाचल दे एक छोटे जे टाउन च। असी जंगल च एंटर कर रहे सी, उस पिंड दे सरपंच ने सानू उस एंट्री ते आके रोकिया कि तुसी दसो जी किस लिहाज नाल तुसी साडे जंगल च एंटर कर रहे हो, तुहाडा परपज़ की है, तुसी की कलेक्ट करोगे, तुहाडे कोल जिहड़ी जरूरी परमिशन है वो है। ये क्यों होया? क्योंकि उस पिंड दे सरपंच नूं उत्थों दे बशिंदियां नूं ये अवेयर है कि यह जंगल साडा है, ये रिसोर्स मेरा है, इस रिसोर्स नूं सांभण की जिम्मेवारी मेरी है। जो तक असीं उन्हां नूं सारे डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए उन्होंने सानूं अंदर नहीं जान दिता। सो जदों तुसीं इहजा कनैक्ट इहजा राबता स्टैबलिश कर लैंदे हो नेचर दे नाल, फिर तुहाडे रिसोर्सिज उस तो दुगनी रफ्तार नाल बाउंस बैक कर। सो ये नेचर दे नाल जुड़ाव, लगा और नेचर लई कमिटमेंट, ये तीन चीज़ां ने जिहड़ियां बहुत जरूरी ने।
2: जी बड़ी तुसी अहम गल बोली कि असी नेचर नूं ना अपनी ज़िंदगी दा पार्ट समझिए, हिस्सा समझिए, ते असी ये समझिए कि नेचर ते असी इक आ, ये ना समझिए कि नेचर वक्री है ते असी अपनी निजी ज़िंदगी दे विच चलते रहेंगे ते नेचर अपना निखार अपनी ग्रोथ आपे देखती रहेगी।
1: जी
2: जद तक असी अपने रिसोर्सिज़ नूं अपने कुदरत दे आसपास जिहड़े रिसोर्स पेड़ पौधे पानी हवा, गुरबाणी च तां असी पढ़दे ही हां, जद तक असी उहनां नूं अपने अंदर धारण नहीं करांगे कि साडा हिस्सा ने इह, तां तक नेचर 'च सुधार नहीं होएगा। जिस तरह कि साडे माहिरां ने भी कहा भी ओह पॉइंट नहीं आया कि जित्थों असीं वापस ना आ सकीए। पंजाबी 'च कहिंदे वी डुल्ले बेरां दा हले भी कुछ नहीं विगड़िया,
1: जी
2: ते असीं अगर उहनां नूं सांभ लईए तां सांभिया जा सकदा। किधरे ऐसा वेला ना आ जाए कि सरकारां वल्लों प्रशासन वल्लों फाइन लगदे होण कि तुहाडी तनखाह कट्टी जाएगी, तुसीं एक पेड़ नहीं लाया, तुसीं पाणी बर्बाद कीता, कुछ अजिहा समां ना आ जाए, फिर सानूं होर तकलीफ होएगी। आर्थिक पक्खों तां असीं मार सह ही रहे हां वातावरण दी,
1: जी
2: ते कुछ अजिहा समां ना आए कि जिथे सानूं फाइन लगने पैण, जुर्माने भरने पैण, ते हाले भी समां है कि असीं कुछ ना कुछ सांभ लीए।
3: सर, तुसीं बहुत अच्छी गल कही है। मैं इहदा गल जोड़नी चाहुंदा, जिहदा तुसीं सख्ती करन दी लोड़ है, जिदां असीं नवें बिल्डिंगां बणदे हां, कलोनियां बणदियां ने, हुण मैंडेटरी होना चाहिदा है वी ओह वाटर रीचार्जिंग करन। ते साडों वड्डी गल, साडे पिंड वालिआं नूं मैं अपील करूंगा इस तों, जिदां कोले गल जांदी है, बड़ा देसी तरीका, पुराने खूह साडे हुंदे जिथे असीं पाणी लाउंदे हुंदे सी, ओह बंद हो गए, ट्यूबवैल आ गए, ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਦ ਕੇ ਅਤੇ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਮਰਦੇ, ਬੂਟੇ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ।
2: ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ
3: ਜੀ
2: ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਨੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਲਪੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
3: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ,
1: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
0: ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹਮੇਂ
1: ਸ਼ੁਕਰੀਆ
0: ਬੁਲਾਣੇ
1: ਜੀ।
0: ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਕਾ।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਥਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੜੀ। ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਥਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।
4: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਥਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਨੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਲਪੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲਿੰਗ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
5: ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ

0: ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀਤਾ 100.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਐਪ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: प्रियंका अरोड़ा समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे।

0: जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

बजाय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी

0: विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों से। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, आज के फनकार। इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसीलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया।

यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजाद खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट वन, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

केंद्र सरकार ने एक उस पर बैठे थे होर कारना करके जनसंख्या की तब्दीली दियां चुनौतियां नाल निजिठण लई एक उच्च पदवी कमेटी बनाई है।

दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति ते शिवांश वर्मा लिख रहे ने पिंड पीपर रोड, पीपर लोड, सरगांव, छत्तीसगढ़ तो। श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, सचिव कुमार सचिन तवायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सवर्त देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख ते कुमारी कल्पना देशमुख लिख रहे ने कालेगांव जाफराबाद तो। पटेल नगर मलोड़ तो डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया ते गुड्डू। हनुमानगढ़ टाउन तो रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र तो पीएस नोहांकर, निर्मला नोहांकर, विशाल नोहांकर ते मुलकापुर तो नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहेरकर ते उन्हों का पूरा परिवार। किशनगंज बिहार तो रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया ते माधुरी किरण। आओ सुनते हैं ना सब दी रली मिली पसंद नू। आवाज है सतिंदर सरताज की।

अगली फरमाइश शामिल कर लेने हैं जी। ये हैगी है जी, खैल बाजार पानीपत तो लिखण वाले ने नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक तो पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का ते डुगू भाविक सिक्का, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक ते बलबीर सिंह लिख रहे ने जिला मुरादाबाद पिंड दुल्लापुर उत्तर प्रदेश तो। पटियाला तो परमजीत सैनी, राजेश सैनी, युवराज सैनी, सिमी ते निमी। वर्ली मुंबई तो ये नाम असं पहला पढ़ चुके हैं जी, गुजारिश है जिन्होंने नाम पढ़ लिया दोबारा मैसेज ना करन सानू। अगली फरमाइश साढ़े कोल आई है जी, जलालाबाद पछमी तो लिखण वाले ने सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा। मॉडल टाउन करनाल तो सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, बिपेशा शर्मा, माया कुमार, गुरविंदर सिंह, पांडा, किरण ठाकुर ते नीलू रानी। जवाहर नगर दुर्ग तो आरसी कामड़े, करुणा, मीना अश्विनी ते विपुल कामड़े। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा तो रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, सिमरत ते गुरुशब्द सिंह राहुल। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा तो मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल ते नदीम पटेल। फतेहगढ़ लुधियाना तो मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना तो विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक ते विनोदपुरी। नरेंद्र नरोला दी आवाज़ च गीत कोई सुनना चाहते हैं लवई छत्तीसगढ़ तो लिखण वाले ने गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी ते राणी मानिकपुरी। आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन ते उन्हों का पूरा परिवार लिख रहा है उत्तर प्रदेश तो। पिंड चौधरीवास हरियाणा तो मांगे राम सतौड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम ते यश कुमार। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती तो सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई गोडाने, हीरामन शेंडे जी ते प्रतिभा गोडाने। अगली फरमाइश साढ़े को आई है जय विहार नजफगढ़ तो लिखने वाले ने शाहरुख फारूक, शबनम ते शहनाज। रामगढ़ कैंट तो महेंद्र मोदी ते ठाकुर साहेब। पिंड चहलदा बागपत तो संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, जगदीश ताकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई ताकड़, युवराज सिंह ताकड़, शिवांगी ताकड़ लिख रहे ने पिंड हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी तो। सुखबीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह पिंड छाजली जिला संगरूर तो। बुरज हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा ते उन्हों का पूरा परिवार। मनदीप सिंह दीपा बस स्टैंड जलाल दी वाल जिला लुधियाना तो। पिंड मौलनवाल तो ये नाम असी पढ़ चुके हैं जी पहला। मंडी बुलडाना तो शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुजू बावा, आयजा नज अनम,

मुदस्सिर हुसैन। संबलपुर कांकेर तो फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। पिंड मूलियावाली जिला फाजिलका तो विनोद काटपाल, प्रवीण काटपाल, हनी काटपाल, दीक्षा काटपाल, जन्नत काटपाल। ताड़ी नदुरा महाराष्ट्र तो श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्या बाठे। ते उस तो बाद साढ़े कोल अगली फरमाइश आई है जी, ये लिख रहे ने पिंड उगाला जिला अंबाला हरियाणा तो रजिंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव ते हरमन। आओ सुनते हैं ना सब दी रली मिली पसंद नू। आवाज है कंवर गरेवाल दी।

इस गीत च सादिता सी आशा भोंसले जी का अशोक कुमार जी ने। अगला गीत थोड़े सामने पेश कर रहे हैं शंकर जयकिशन के संगीत द्वारा सजाया होया आशा भोंसले ते मोहम्मद रफी दी आवाज़ों में फिल्म तुम हसीन मैं जवां विचों।

0: ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਜਨੀਗੰਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। FM ਬੈਂਡ 107.2 MHz ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਐਪ ਤੇ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवास और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
4: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज. इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल.
2: परिणाम लक्षी कार्यवाही ही भी हमने करनी पड़ेगी.
3: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshi